0: बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: 2 या 4?
1: 4।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: 4 या 5? 5।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
4: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस लौटाएगा?
2: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
3: चार या
2: पांच?
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2.

0: part of the Big Weekender. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।

0: 106.2 The Beat of Bollywood. High speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. Germany. Presenting sponsor Danube Properties. Title sponsor Papa John's. Associate sponsors Ford and Sharaf DG. Ethnic partner Bavri and Kora. Travel partner AFC Holidays. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name to 054-309-1062. The big check-in to Germany. Only on Big 106.2.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: Rewind your heart. Rewind your weekend. Let the 2000s take over. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो?
2: बोले तो मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: Get ready to laugh till your stomach hurts. The best comedy is hitting the stage and these two old legends are about to drag each other down live. Purane Chawal, starring Kumud Mishra and Shubhrajyoti Bharat, directed by Sumit Vyas. Catch this seasoned comedy on 26th and 27th September at The Junction. D for Drama. Book your tickets on Platinum List. Event made large by Big 106.2.
4: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
5: दो या चार?
4: चार।
5: कब तक वापस लौटेगा?
4: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
5: चार या
4: पांच?
6: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सेड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सेड, Saturday 7-9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2.

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। द बिग वीकेंडर, the biggest Bollywood hits non-stop.
4: Non-stop hits.
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 101.2 The Beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने
3: 2 या 4
2: कब तक वापस लौटेगा
3: यूं ही यहीं 4-5 दिन में
2: 4 या 5
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन ओटीटी पे क्या देखें क्यों देखें देखे भी या करें स्किप मैं सब बताऊंगा द बिग बिंज विद सिड प्ले दबाओ कंफ्यूजन हटाओ
5: द बिग बिंज विद सिड Saturday 7 to 9 p.m. and Sunday 10 a.m. to 12 p.m. only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. If you've ever set a ringtone to Kya Mujhe Pyar Hai, you're in the right place. This is the Big Millennial Weekender only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: The songs that raised us. The stories that stayed with us. Your weekend throwback begins now. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटाएगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। मिलेनियल्स यूनाइट, your filmy flashback has officially begun. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the Beat of Bollywood.

0: If you've ever set a ringtone to Kya Mujhe Pyar Hai, you're in the right place. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने
3: दो या चार
2: चार
3: कब तक वापस लौट आएगा
2: यू ही यही 4-5 दिन में
3: चार या
2: पांच
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन ओटीटी पे क्या देखें क्यों देखें देखे भी या करें स्किप मैं सब बताऊंगा द बिग बिंज विद सेड प्ले दबाओ कंफ्यूजन हटाओ
0: द बिग बिंज विद सेड Saturday 7 to 9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2 The Beat of Bollywood More music, more stars, the part of the Big Weekender Big 106.2 The Beat of Bollywood

ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वन जुबिन नौटियाल ऑन द वोकल्स, तनिष बागची का म्यूजिक इस हफ्ते नंबर 40 पर. मूविंग ऑन, अ मूवी दैट पीपल आर लविंग री वॉचिंग, इट इज Mirzapur the movie, and they've recreated this iconic कवाली.

top 40 biggest hits of the week with the Big Bollywood Countdown right here on Big 106.2, the beat of Bollywood. That was Gana number 38 from Dhurandhar the Revenge. Keeping you company, I'm Nancy. Moving on to number 37 has to be a beautifully recreated Gana. Movie ki bahut tareef maine suni hai. क्योंकि ये हुमा कुरैशी और साकिब सलीम जो भाई बहन भी हैं, इनके प्रोडक्शन हाउस की पहली मूवी है बेबी डू डाई डू. वेरी क्रिटिकली अक्लेम्ड, बट आई मिस्ड वॉचिंग द मूवी इन द थिएटर्स. सो या, आई वुड वेट फॉर द ओटीटी रिलीज. बट इसी मूवी के लिए रिक्रिएट हुआ ये गाना इस हफ्ते ऑन नंबर 37.

0: इसी के साथ नंबर 36 पर ब्रांड न्यू एंट्री रवि किशन जो छाए हुए हैं ऑन मीम्स ऑफ कोर्स इन मूवीज टीवी शोज पॉडकास्ट. आई थिंक रवि किशन इज द परफेक्ट एग्जांपल कि जब आपका वक्त आता है ना तो छप्पड़ फाड़ के आता है.
1: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है. सुनो नाम या दाम.
0: Money follows my brother. Beautiful, beautiful गाना. मतलब it's a party anthem. It's got the Ravi Kishan vibe. And आप पूरा गाना सुनेंगे तब आपको बहुत मजा आएगा. इस हफ्ते on number 36.
2: The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood. The Big Jill.
3: All my favorite music in one spot.
2: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
4: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने.
5: दो या चार.
4: चार.
5: कब तक वापस लौटाएगा?
4: यूं ही यहीं. चार पांच दिन में.
5: चार या
4: पांच. पांच.
6: Life में जितने option उतना confusion. OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा. द बिग बिंज विद सिड. प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ.
2: द बिग बिंज विद सिड. सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 37.

0: 36.
1: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो। नाम या दाम?
2: नाम। मनी फॉलोज माय ब्रदर।

cast ever. And of course, IMDb पे इस मूवी को 7.9 रेटिंग मिली है. मैं हमेशा कहती हूँ मूवीज खुद जाके एक्सपीरियंस करनी चाहिए एंड अपने अड़ोस पड़ोस के दो चार लोगों से पूछ के रिव्यू लेके. यू कैन नॉट गो एंड मिस अ मूवी लाइक वेलकम टू द जंगल. इट इज अ प्योर प्योर प्योर एंटरटेनर. Playing in the top 40 biggest hits of the week, and I always watch movies that I feel like. I do not go by the reviews, and I'm so glad that I watched Tere Ishq Mein because I thoroughly enjoyed the movie. I know mixed reviews the, but mujhe ye movie bahut achhi lagi. In fact, recently, because it's available on Netflix, I re-watched Kriti Sanon, Dhanush Ki Tere Ishq Mein from the same movie this week on number 34.

टॉकिंग अबाउट वाइब, अ ब्रांड न्यू एंट्री. मूवी का नाम वाइब है. 18 सितंबर को ये मूवी रिलीज हुई है. मूवी इज एक्शन थ्रिलर कॉमेडी, जिसे लिखा है, डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है कुणाल खेमू ने. एंड ही इज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर. बिकॉज आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन आई सॉ मडगांव एक्सप्रेस एंड दिस इज द सेकंड वन दैट ही इज डूइंग. ग्रेट रिव्यूज कमिंग इन. लोग कह रहे हैं द मूवी डेफिनेटली इज अ वाइब. देयर इज कुणाल खेमू इन द मूवी. वी हैव गॉट स्पर्श श्रीवास्तव, प्रिटी जिंटा मेकिंग अ कमबैक, एंड अ स्पेशल कैमियो शर्मिला जी, शर्मिला टैगोर जी का, जो कुणाल की सासू माँ भी है. सो ओवर द वीकेंड इफ यू वांट टू वॉच अ गुड मूवी, यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच द वाइब बिकॉज इट हैज ऑल द फील्स. नंबर 26.

0: जो डर गया समझो मर गया, इनका सामना करो, तुम आगे बढ़ती रहो और इन्हें
1: नंबर 15

On number 10 this week, this is Ranaji 2.0, Tanish Bagchi's magic of recreating the great bangers from the 90s. यह है बिग बॉलीवुड काउंटडाउन, मैं हूं मानसी। मूविंग ऑन टू नंबर 9, चिपक गया ये गाना कॉकटेल 2 से। वी गॉट जब तलक, एंड टॉकिंग अबाउट कॉकटेल 2, विल नॉट गेट टू सी अ लॉट ऑफ शाहिद कपूर इन द नेक्स्ट सेकेंड हाफ ऑफ 2026, आई मीन अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कोई रिलीज है नहीं शाहिद कपूर की। आई विल गेट टू सी हिम फर्जी 2 में, विच इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज इन द मिड ऑफ 2027। देन वी ऑल्सो गेट टू सी हिम इन अ मूवी कॉल्ड ड्रैगन, जो प्रशांत नील का डायरेक्टोरियल है एंड एक्सपेक्टेड रिलीज है 11 जून को। शाहिद कपूर जूनियर, NTR, आलिया भट्ट और अनिल कपूर के साथ दिखेंगे। सो या इट्स High octane international action thriller. So yeah, next year he's got quite a lineup, but I think he's done for 2026 with O Romeo and Cocktail 2. Filhal is hafte on number 9. इसी के साथ नंबर 8 पर धमाल 4 से वी've got तनिष्क बागची।

0: far, Dhurandhar 2 remains on top as the highest grossing Indian film of 2026 and the second highest grossing Indian film of all time. And talking about Dhurandhar 2, from the same this week on number 5.
1: This is the Big Bollywood Countdown.
2: All the music I love.
1: The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood.
3: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
4: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
3: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
4: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
3: चलो चले अलराज।
1: The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood.

2, Cocktail 2 say that was Mashuka, a song which I think is here to stay. Yeah, big Bollywood countdown. I'm Mansi, and of course, is hafte number 2 par. मैंने कहा ना जिंदगी में बहुत सारे इंतजार हैं हमारे, बट एक ऐसा इंतजार जो हम सब कर रहे हैं कि मुसाफिर 2 कब आएगा. नेटफ्लिक्स ने 12 दिन बाद ही ऑफ द फर्स्ट सीजन अनाउंस कर दिया था दैट देयर विल बी अ सीजन 2, बट आई थिंक वी विल हैव टू वेट अंटिल 2027. लाइफ में बहुत सारी स्ट्रेस है, करियर की, पर्सनल लाइफ की, लव लाइफ की, एक्सक्यूज की, बट एक स्ट्रेस और भी है. क्या चंदर प्रीति के साथ रहेगा या फिर सुधा के साथ?

0: Countdown. इस हफ्ते के 40 सबसे धमाकेदार हिट्स.
1: Countdown.
2: Here we go.
0: सिर्फ Big 106.2 Beat of Bollywood पर.

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बता दूं मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: searching. Start watching. Sid's got your weekend entertainment sorted on the Big Binge. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा सज्जादेरा रसल खोर अलकूज गुसेस अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
0: Autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. Germany. Presenting sponsor Danube Properties. Title sponsor Papa John's. Associate sponsors Ford and Sharaf DG. Ethnic partner Bavri and Kora. Travel partner AFC Holidays. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name to 054-309-1062. The big check-in to Germany. Only on Big 106.2. Yeah, let's go. The Big Weekender. The biggest Bollywood hits non-stop.
3: Non-stop hits.
0: Big 106.2. The beat of Bollywood.

हेलो एंड दिस इज बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड एंड वीकेंड आ गया. वीकेंड का मतलब ये कि इट्स टाइम फॉर द बिग बिंज. क्या करते हैं हम शो में आप जानते हैं. वी एंड अप सेविंग यू अ लॉट ऑफ टाइम. अगर आप भी मेरी तरह बहुत सारा टाइम, हार्ड अर्नड समय अपना वीकेंड का बर्बाद कर देते हैं दोस्तों से पूछने में, रिव्यूअर्स से पूछने में, बहुत कुछ कॉन्टेंट देखने में और फिर कन्फ्यूज होने में कि क्या देखें क्या नहीं, दिस इज अ शो दैट्स गोना गेट यू आउट ऑफ दैट सिचुएशन एंड मेक श्योर यू डोंट स्पेंड इवन अ सिंगल मिनट ऑफ even a single minute of your hard-earned time over the weekend. Aaj hum baat karne wale hain about this brand new show called The Revolutionaries on Amazon Prime that everybody is talking about, the good parts, the bad parts, and finally whether you should stream it or skip it. All that and much more coming up right here on The Big Binge with me, Sid. This is Big 106.2, the beat of Bollywood.

बिग 106.2 पर दिस इज द बिग बिंज एंड हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द रेवोल्यूशनरीज दैट स्ट्रीमिंग ऑन प्राइम वीडियो. माय नेम इज सिड एंड दिस इज दैट हिस्टोरिकल ड्रामा दैट्स बिल्ट अराउंड यंग इंडियन रेवोल्यूशनरीज जिन्हें विश्वास था कि आजादी फ्रीडम पेशेंस या पेटिशन से नहीं मिलेगी, डायरेक्ट एक्शन से मिलेगी. डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा. बिग प्री रिलीज बज वॉज अबाउट द स्केल ऑफ द शो, कि कितने पैसे खर्च कर दिए एंड ऑफकोर्स द कास्टिंग जो कि बहुत हटके है. स्पेशली भुवन बाम इस शो में है तो पीपल हम लोग जेन्युइनली कंसर्न थे, क्यूरियस थे कि भुवन बाम को क्या हम सीरियसली ले पाएंगे. विल ही बी एबल टू परफॉर्म वेल इन दिस वेरी सीरियस पीरियड ड्रामा. और ये जो क्यूरियोसिटी है That's turned into one of the biggest surprises of the show, I feel. Visually, काफी expensive लगता है, period detailing काफी impressive है, political intrigue है, danger, idealism, ये सब कुछ, it keeps us invested. But does the show have enough legs to sustain that promise? That's what we're going to talk about today on The Big Binge. Coming up, we're going to start with one of the really good aspects of The Revolutionaries on Amazon Prime. This is The Big Binge with me, Sid.

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बता दो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let's Sid take control of your weekend watch list. This is the Big Binge only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

Big 106.2 par. This is the Big Binge with me, Sid. Now it's time to talk about the negative, not so good aspects about Amazon Prime ki latest series called The Revolutionaries. Now this show has a problem. It is a usual problem. Kyaar show thoda sa स्लो है. कुछ ऐसे स्ट्रेचेस हैं शो में जहां पर बार बार चीजें एस्टैब्लिश हो रही हैं एंड देन यू फील लाइक सेइंग यार हाँ मैं समझ वी गेट इट. एक बार आपने समझा दिया, बार बार क्यों वही वही चीजें समझा रहे हो यार. वी नो वेयर वी आर, व्हाट टाइम इट इज एटसेट्रा. यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट ऑल द टाइम एवरी टाइम ऑल ओवर अगेन एंड यू आर लाइक यू नो डेस्परेट फॉर द स्टोरी टू मूव आगे. भाई कहानी आगे बढ़ाओ वाली सिचुएशन आपके साथ होगी. आई एम नॉट लाइंग. कुछ कैरेक्टर्स ऊपर से ऐसा है कि दे आर मोर कंपेलिंग देन दी अदर्स. तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जब वो अदर्स की बात हो रही है तो यू लाइक अरे यार वो वाला कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है, उस पर वापस कब जाएंगे, उसकी कहानी कब बताओगे. एंड देन क्योंकि ये सीरीज इट डील्स विद रियल हिस्टोरिकल फिगर्स, कुछ हिस्ट्री के रियल इवेंट्स पे ये बेस्ड है, कुछ ऐसे मौके आएंगे जहां पर द ड्रामा कैन फील अ बिट टू पॉलिश्ड, थोड़ा ज्यादा ही सिनेमैटिक. यू एक्सपेक्ट अ बिट ऑफ यू नो अ मेस, थोड़ी अर्जेंसी एंड देन एवरीथिंग डजंट हैव टू बी टू पॉलिश्ड, लेकिन Everything is a bit too beautiful in some stretches. And अगर आप एक fast-paced action series expect कर रहे हो, this series is definitely not that series. It is much more deliberate. The question is कि इतना सारा patience आपने invest किया, will that patience pay off? Should you stream it or skip it? The verdict coming up on The Big Binge with me, Sid, right here on Big 106.2, the beat of Bollywood.

Big 106.2, but this is The Big Binge with me, Sid. It's now time for the most important but the most difficult part of the show, and that is the verdict. Hum baat kar rahe the aaj about The Revolutionaries, the new show on Amazon Prime. Isko stream kare ke skip kare, Sid bhai? Gyan to bahut ho gaya. Chalo, let me tell you my verdict. And the verdict is, you should actually stream it. Lekin, the condition is that if you are a very patient person, then you should stream it. Ye koi perfect show nahi hai. Pacing काफी ऊपर नीचे है, कुछ episodes they could have been much much tighter, not every character lands equally well. लेकिन अगर आप एक भाई खाता करेंगे, अगर आप एक balance sheet बनाएंगे, the good actually outweighs the bad. Ambitious show है, beautifully mounted है, and एक ऐसे part of Indian history के बारे में बात करता है जिसको बहुत ही emotion और सेंसिटिविटी के साथ हैंडल करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द स्केल, एंड दे हैव एक्चुअली मैनेज टू इन्वेस्ट ऑल ऑफ दैट. भुवन बाम इज जेन्युइनली वेरी गुड. देखो, अगर आप भुवन बाम के फैन हैं, तो डेफिनेटली दिस बिकम्स एन अनमिसेबल शो. परफॉर्मेंस काफी अच्छी है इनकी, ऑनसेंबल कास्ट गिव्स द शो रियल वेट. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब आप शो देख चुके होंगे, इट लीव्स यू इंटरेस्टेड इन द पीपल बिहाइंड द हिस्ट्री. यू विल बी गूगलिंग, यू विल बी विकिपीडियाइंग, एंड दैट्स मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स व्हेन यू सी अ हिस्टोरिकल ड्रामा, इन माय ओपिनियन. तो अगर आप सीरियस पीरियड स्टोरी टेलिंग एंजॉय करते हैं, यू डोंट माइंड लाइक अ स्लो बर्न काइंड ऑफ अ शो, देन वॉच द रेवोल्यूशनरीज ऑन प्राइम वीडियो. सो दैट्स माय वर्डिक्ट ऑन द बिग बिंज. गो स्ट्रीम द रेवोल्यूशनरीज. दिस इज द बिग बिंज विद मी, सिड.

बिग बार 6.2 पे टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ फ्रॉम द बिग बिंज। भाई बड़ी मेहनत का काम होता है कि आपसे पहले सारे के सारे शोज और OTT के कंटेंट देखो, पुट माय नेक ऑन द लाइन एंड देन गिव यू अ वर्डिक्ट। आई होप यू आर अप्रिशिएटिंग इट। आई मीन इफ यू लाइक इट, डोंट लाइक इट, लीव अ कमेंट ऑन आर इंस्टा 106.2 बिग एफ एम, दैट इज आर इंस्टा हैंडल 106.2 बिग एफ एम। अगर आप नहीं फॉलो करते तो फॉलो कर लीजिए। फाइंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट ही नहीं, सम तरीके टू विन सम बिग प्राइजेस इंक्लूडिंग अ ट्रिप टू जर्मनी, बट डोंट टेल एनीबडी, जस्ट गो इन क्विकली क्वाइटली follow us. I'm Sid Sid, SIDACTH, signing off. I'm going to see you on a Monday morning on The Big Breakfast, 7 to 11, the show that gets you up and running. Till then, enjoy your weekend. Bye-bye.

0: Weekender. The biggest Bollywood hits non-stop.
1: Non-stop hits.
0: Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: क्या बात है क्या चीज है पैसा क्या बात है क्या चीज है पैसा क्या बात है क्या चीज है पैसा क्या बात है क्या

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।

आप सुन रहे हैं बिग मनोज पॉइंट टू द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big 106.2, the beat of Bollywood.